0: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
1: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

0: र मेरो भाग हुनुहुन्छ। प्रिय श्रोता, हरेक विश्वासीले जस्तै आसापले पनि हाम्रो भविष्यको आशा बुझ्नु आवश्यक थियो, ताकि उसले आफ्नो वर्तमान परिस्थितिहरू सहन बल पाउन सकोस्। मेरो यही प्रार्थना छ कि तपाईँहरू जो जतिले परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भविष्यमा परमेश्वरबाट महान आशिष पाउनुहुनेछ भन्ने यो योजनालाई पनि बुझ्नु भएको होस्। आजको वचन सुनाइद्वारा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: प्रिय श्रोता, प्रभावशाली बाइबल शिक्षक तथा आत्मिक मार्गदर्शक शोन भिक्टरद्वारा लिखित सन्देश हाम्रो आफ्नै नेपाली भाषामा सुन्नुभयो। रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ, मेरो विश्वासमा चमक ल्याउनुहोस्।
2: कार्यक्रमका बारेमा कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 68 55 33 39।
1: हौस् त, कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
3: आजी नेना दिगु दु निछ्या आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ, जुगु विश्वास के चमक हया बिउ। मेपिङगु समस्या या त ठगु समस्या जुके बिमते जयमसी जोजो लपा जे अमृता महर्जनी स्पार्क माई फेथ यु जीवनिया श्रृंखला भाग 28 के छि सकसित न सुब्या। इमगु इच्छा अनुसार ज्याख मवबले अप्प मनुतेस मिपिन त दोषी बिउ ले त चाहिबले थ त चागु थका मिपिन त दोष बिउ सुना न इम त व्यवहार या त कि इमस उमो मनु या त इम त भावनात्मक रूप चोट लागेगु दोष बिगु मिपिन त छित घृणा या व्यवहार यही बोले छिगु प्रति दोष तै बोले इमगु समस्या या त छिगु समस्या जुइके बिमते मुख इमगु व्यवहार या त छिगु दुख त प्रतिक्रिया व्याधिगु धैगु हेख यो पिनियन मेपि थगु हे विचार वो भावना या जिम्मेवारीका अले सु छन् त चाके बोले वयागु जीवन या छु जुया चुङ्गुली त चाकल धका स्वीकार्या वो त या त इमगु समस्या कथ स्वीकार्या छिगु मुखु गुब्ले छि त चाया प्रतिक्रिया बिग्ले इमस छि त गथे व्यवहार या त धका त चाई छि इपी पाखे तपक्क उनी आछि इमगु समस्या थ ना प चुना सुन अथे याद याई मते बरु इमगु त या त मतिना वो दया लिसम्ब्यु छादासा छि न अथे हे ख रोमी चिन्युगु अध्याय निगु पत्के धात बुदो आवो निसे थो संसारे पि मनु देस याना गु थे छिम्स याना जुई मते बरु मन या त हिका नुपि मनु त जुया चो थुक थ याना जुसा परमेश्वर यु इच्छा छुख अले भिङ्गु वो या त योगु वो छुख ठिक छु छिम्स बालक सिके थुइके फै छि सुख वो छि त गथे ता धका मेपिन त कोछी बिमते थो इम त छित गथे याना व्यवहार याई धैगु खे आधारित जुई परु परमेश्वर यु छिगु बारे छु बिचा याई धका छिगु नुगा या बिचा या त नियन्त्रण टेकीमा वेक छिगु बारे छु बिचा याई छि आजु जाय पुमख अले छि वया अनमोल मचा ख यो पिनियन मिपि यदि सुयागु जीवन या परिस्थिति या कारण बालागु हि वोल अले परमेश्वर या वचन पाखे सकारात्मक विचार याए त थगु विचार या त गथे याना नियन्त्रण यागु धका म से कल धासा वया त त वै दुख जुई अले इम्स वो त मेपिन त पिकाई वो इमगु समस्या ख थो छगु समस्या म हो इपि त चाहि बोले इम्स छन् त बामलाको व्यवहार याना चुन इम त करुणा मतिना वो क्षमा या लिस बिउ ल यदि इम्स छित कुकथ व्यवहार याई धका छि थ त बालागु महसुस याके बिया दिल धासा छि इमगो समस्या या त थ लिसे हे जुना चुना दिगु जुई अथे या मते मनु देस छित बामलाको व्यवहार याना चुन धासा वो इमगो समस्या ख रोमी झिङ्गु अध्याय यो नि छगु पत्के धाया टगुदु म भिङ्गु नि छिम त त्याके बिमते बरु छिमस भिङ्गु या त त्याके फै यो पिनियन मेपि थुके यसो ख्रिस्ट सित्त मख वया त मनुते त मत्ती कहे घेरेना त गुख इम्स वया त आलोचना या त इम्स वया त दोष बिल इम्स वया त घृणा या त यसो इम्गु नकारात्मक भावना या त गुब्लेन थलिसे मयङ्कल म थुइ कल कि थुगु समस्या म हो इम्गु समस्या ख अले म थत निरन्तर मेपिन त मतिना व दया नाप लिस बित अनुमति बिल मत्ती न्यागो अध्याय यो पिपेङ्गु पत्के ध्या त गुदु तर झिँ छिम त ध्या शत्रु या त माया थत दुख बिपिनी गुनिति प्रार्थना या थोहे ख वैकल झित या त आग्रह या नदिगुदु अले आज चाहे पुगु खु धासा झिस को उद्देश्य या त पालन यायगु लै बोले झिगु जीवने आनन्द व शान्ति या भावना कायम या फै रोमी झिन्गु अध्याय यो झिन्सागु पत्के धा टगुदो फुक्क मनु त नाप फया फतले मिले झुया सुनेगु कुत या यो पिन्जेन मेपि मेपिनीगु नकारात्मक मनोवृद्धि छिगु मनिया शान्ति क्याम मते परमेश्वर छिगु बारे छु दया चङ्गु धका नुक्लेती छि जीवने गुले आनन्द क्या फै धयुगु छिगु थ प्रतिक्रिया दृष्टिकोण निर्धारण याई मनु त संक्षित व्यवहार यही बोले उम्स थगु हे कथ जक्क व्यवहार याना चुनिगु दु धका बिजा याना दिस अले छि थगु हे कथ प्रतिक्रिया ब्या दिस मथिना ओ दया लिसे थौयाको वचन याना दिगुनी छि सकसित न परमेश्वर स्वभावीमा जयमसे छिम्स नकतिनी हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्तिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकु सुबा परमेश्वर छित सवाबीमा जयमसी।